देवकी अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

श्रीदीप नारायण भगवान श्री देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म।

0: ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महाशरणं सुजी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhu ji here, maybe. You're here.
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhu ji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: विश्व गुरु महामान्य स्वामी
1: गुरुदेव की जय।

देवा की आराधी भगवान दीप नारायण भगवान की सत गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय।

0: आने की अलकपुरी जी महादेव देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

नारायणम् ओम नमः श्री प्रभुदीपाय श्री दीप नारायण भगवान की देवादिदेव देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की अलकपुरी जी महादेव की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति भजन।

शिष्टवेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी योगी राज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। योगी जनों की योग निंद्रा।

0: की जय। श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय। श्री शलपुर जी महाराज की जय। हिंदू धाम समृत सतगुरु स्वामी माधवरण जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरन जी योगी राज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय।
1: जय।
2: Very good. Thank you. Hari Om, everybody. Today is finished.

श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेवा की जय। श्री सत गुरुदेवा की जय।

0: ओमबोलाय श्री दीप नारायण अग्वान की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरी।

0: भले सिद्धि भगवान देव पुरुष महादेव की जय। श्री सिद्धीप नारायण भगवान की जय। सियालकपुरी जी सीधा पिता परंपरा की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: की जय। हिमालयन सिद्धवतार सियालकपुर जी भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत्व गुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।
1: I'm practicing. Okay, make sure.
2: But I would go.
1: Well, you. You need to sing. Okay, then you sing.

अम्बले श्री दीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेव की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।

0: श्री दीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेवा की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।
1: Okay. Gracias por hacer.